गुर चरणी मथा पैरी मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हथा अकाल मूरत हृदय ते आएंदा दिन रहन जपंथा मैं छड़या सगल अपायणो परवासे गुर समरथा गुर

तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु तिनै ताप निवारण हारा दुखन दास परास ता कहो बिघन न कहो लागे जाकी प्रभागे अरदास अरदास क्यों का श्री वाहिगुरु जी की फतेह वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक ले ते आए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए करनाओ निधावे ताए सब थाई होए सहाय धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब महाराज जीओ सब थाई होए सहाय दसा पातशाह की जाग जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दा ध्यान करके बोलना जी पंजां प्यारियां चौहान साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया बन सकिया देख चलाई ते गवाई देख के अंडिट किता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म ऐसी दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखणिया ते चढ़े आरिया नाल चीरे गए गुरुद्वार लिए कुर्बानियां कितिया धर्म नहीं हारिया सिखी कैसा स्वासा संग निभाई तिना दी कमाई का ध्यान करके बोलना जी पंजा तख्तां शब्द ग्रंथ का ध्यान करके बोलना जी प्रथम शब्द खालसा जी की अरदास है शब्द खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुखोए जहां जहां खालसा जी साहब तां तां रचे रियायत देख पेख पते वृद्धगी बैज पंथ की जी श्री साहब जी खालसे जी के बोल वाले बोलना जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पदा रखा अकाल पुरख अपने पन दिसदा साहिब दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन ते सेवा संभाल दा दान बख्शना जियो हे निमाणियों के मान नितानियों के तान नी ओटियां की ओर नियासियों के आसरे जागे जोत पिता साहिब तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियो आप जांदे चरण कमलां च अरदास बेनती जोधरी सतगुरु जी घरां च बैठ के लाइव कीर्तन जिहड़े सरवण कर रहे हन माया भेट कीती सारियां दी प्रवानगी करनी सतगुरु जी हाजियां लेखे चलाना हिरदे अंदर नाम दा निवास करना सतगुरु जी ओ अरदास है बच्ची जीवा अते बच्चा कबीर दा जन्मदिन है सतगुरु जी ओ बच्चियां नूं चढ़दी कला दा जीवन बख्शिश करना आप जांदे महावाख हन लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर के सतगुरु जी ओ आप जांदे चरण कमलां च अरदास बेनती जोधड़ी सतगुरु जी संध्या समय आप जांदे कीर्तन होए हन सतगुरु जी ओ कथा हुई है अरदास हुई है बेअंत भुलां हो गया हो गया बख्शन हार बख्श लेना सतगुरु जी असी खते बहुत कमावन दे अंत ना पारा वार कर कृपा करके बख्श लेहो हम पापी वड गुनागार सतगुरु जी सारी संगतां दी अरदासां प्रवान करनिया हाजरियां प्रवान करना सारिया के हिरदे अंदर नाम का निवास करना सतगुरु जी इस वेले अपना पावन हुक्मनामा बख्शिश करो ते हुक्म ते चलन की समर्था बख्शिश करनी अखर वादा काटा भुल चुक माफ करने सरबते कार्ज रास करने सही प्यारे मेल जिन मिलिया तेरा नाम चेता वे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा दोहरा आज्ञा पई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिलवोच है

तिनका बौहर कछ ना बीचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मझारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कीर्तन सोहला सोहला राग गौड़ी जीप की महला पहला, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। जयकर की आखिए करते का होए विचारो, फित कर गावो सोहेला सिवरो सुजनहारो। तुम गावो मेरे निरभव का सोहेला, हों वारी जिस सोहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कमल समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाऊं तेल, देहो सजन सीसनिया जो हुआ साहब सो मेल। घर कर एहो पहुंचा सदरे नित पवन सदन, आरा सिमरिय नानक से देवन राग आसा। महला पहला शेख हर छे गुरु छे देश, गुरु गुरे को बेसनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, शोकर राख बढ़ाई तोय रहाओ। मिसवे चसिया कड़िया पैरा तिसी वारी माहो हुआ। सूरज एक और तनेक नानक करते के कीरते वेस, राग तनासी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मनयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहदा शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोय को, सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध विचरत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भाव है सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अनजनो मोहे आए प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाय वासा। राह गौड़ी पूर भी मैला चौथा, काम क्रोध नगर बो भरिया। मिल साधु खंडल खंडा हे, पूरब लिखित लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ, साकत हर साधना जान्या तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यो ज्यो चले चुभ दुख पावे, जमकाल सहस सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम सुमाने, दुख जन्म मरण पौ खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख उड़ वड्डा हे। जन नानक नाम अदा टेके, नाम सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, यहाँ काट लो हरला हा। गय बचन सुहेला, औद गटे दिन सरहना रे। मन गुरमिल का सुवारे रहो, यो संसार विकार सं से मैं तरियो। ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे, और सकता दिन जानी। जाको आए सोए बिहा, जो गुरते मने बसेरा। निज कर महल पौ सुख सहजे, बौर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मोखो कर संतन की तूरे। अंतर जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मोखो कर संतन की तूरे। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरुदेवे नमः अष्टपदी सिमरौं सिमर सिमर सुख पावौं कल कलेश तन माहि मिटावौं सिमरौं जास विसंबर एकै नाम जपता गंत अनेकै वेद प्राण सिमरत सोदाक्यर कीने राम नाम एकाक्यर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एकै दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उदारू सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन विनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मुचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि सुमाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सुदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगै रुआला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरै तिन अंधक नेरे प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अंधिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिन को प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया।

प्रभु सात अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय जय महाप्यान दूत जम दले तह केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल हुवे अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जी मार्ग जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम सदा तिहाइयै नानक गुरमुख परम गत पाई छूटत नहीं कूट लख बाही नाम जपत है पार पराई अनिक बिघन जय आय सुंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनिक जो जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मल कबू न तू वै हर का नाम कूट पाप को वै सा नाम जपो मन रंग नानक पाई साध कै संग जे मार के गन जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जे पैडे मांद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पहचानू जय महाप्यानु तप्त बहु काम तै हर के नाम की तुम परचाम जात्रिका मन तुझ आकर कै तह नानक हर हर अमृत बर कै भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग कै नानक जन कै बिरत बिकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर धन जन को आ प्रभु दीना हर हर जन कै उठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पूजन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्ता नाम की महिमा संत ऋदुवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विड भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै माँ उदास पिसर थी वै अगन माय होमत प्राण कनिक सुहैवर भूमदान न्यौली कर्म कर बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमक कर श्री कटावै ताओ पी होमे मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर दे छुट्टै
गर्भ गुमान न मन ते हुट सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साध न करे मन ते कबू न बिख्या तरे जल तो वह बहु देह नीत शुद्ध का वे काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत से अनप जमका पवे अपै अनिक जतन कर कृष्ण नात्रा पै भेख अनेक गनी बुझै कूट उपाव दर गैनी सिजै झूठ सुनायु पयाल मुह व्यापै माया जाल अवर कर तू सगली जमडान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लूरै सा संगे हो मैं छूरै जे को जन्म मरण ते डरै सा जना की सरनी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै विमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते उच्चा जाका मनो सगल किरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सिर साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप नहीं लेपा निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नव तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानू आपे अपन संगा प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नानक वर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम है उत्तम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जसन दसन बखानी सगल तान ते उत्तम थान नानक जी कट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण।

मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा। नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटम सुबाया, मिथ्या ओम मैं ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती यस्त वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता, मिथ्या त्रु मोह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान, स्थिर पग साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना पूजनन सुआद, मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन पर उपकार, मिथ्या बास लेत विकार, बिन बूझे मिथ्या सपय, सफल देह नानक हर हर नाम लय, बिरथी सागत की यार जा साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुकावता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाई, मेघ बिना ज्यों कीती जाए, गोविंद भजन बिन बृथे सब काम, ज्यो कृपन की निरार्थ दाम, तन तन ते जन जी घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ, रहत अवर कछवर कमावत, मन प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पेक न खाऊ पीन, और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन मै मरे, जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख न तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पानी तिन प्रभ जाता, नानक जन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पहमाने, आप है आप करत नवेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव सियान सगुल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस पाव है तिसले लड़लाए, थान तनंतर या समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी श्लोक,

देवष्टपदि ये प्रसाद छत्ती अमृत कारी तिस ठाकुर कौ रख मन माही जी प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पाव है जी प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सुदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैरता का जस गिजय जी प्रसाद तु सब को मान मुक्ता को जस रसन बकाने जी प्रसाद तु रहता धर्म मानु सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गै मान पावे नानक पत छेती कर जावे जी प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम सुनेही जी प्रसाद रौला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जी प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कह जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद सो हस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलुक तना राख पुरे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनायु उठत बैठ सत सहते आई तिसै त्याय जो एक अलख है यहाँ उहा नानक तेरी रखै जी प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जी प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जी प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा अनूप जी प्रसाद तेरे निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जी प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनै करनाद जे प्रसाद भेखै बिस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे वसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सब प्रभु त्यागवर कतलागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साथ रे मन मेरे तू तरसरा जे प्रसाद सब की गत हुई नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान पर तेरी माया पू कछु न किन हूँ लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नान किन कै कछु न हाथ श्लोक अगम अगात पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्य कथा अष्टपदी साध के संग मुखो जलो साध संग मन सगली कोत साध के संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटै सुज्ञान साध के संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही समानी साध के संग गुच्छर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हूं तावे साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महा पुनीत साध संग किस्य नहीं बैरु साध के संग न बिगा पैरु साध के संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हताप साध के संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग वस्तगो चरलै साधु कै संग अजर सहै साध के संग बसै थान उच्चै साधु कै संग मैल पहुँचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीज कुटुंब निस्तार है साधु कै संग सो तन पावै
जिस तंते सब को बरसावे सा संत धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लाए नु सा संग अमृत गुण गाय नु साधक संग सर्व थान गम नानक साधक संग सफल जन्म नु साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलुकत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उतरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग नमंति बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगै ब्रह्म मीठा साधु के संग कट कट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जिता सुने तिता बख्याने साध उपमा त्यो गुण ते दूर साध उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बनयाई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे कस बिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी के तृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यों बसुदा को खुदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जलाओ ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मत्तर सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश

ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक और धारै जो अंतर नाम, सर्व में पेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पिख है नितर, साध की टैल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, कुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की बासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानकूट मते को ऐसा परस, वैष्णो सो जी सुप्र सुप्रसन्न, बिशन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए निकर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काऊ फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानकू वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासुन पापा मलख हुवै, तिस भगवती की मत उत्तम हुवै, भगवंत की टैल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सुधै, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सुखम में जानै स्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सा सुन पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, अस्परेत मुगत पाथर को तारै, सर्व रोग काउ कद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म,
जिसका मनु पार ब्रह्म का निवास हो, तिसका नाम सतराम दास। आत्म राम तिसन द्री आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान। सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी परे। सगल संगत मुदास, ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरक तैसा सुसोग, सदा आनंद ते नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर रख है तैसा तिन्नाओ। आपे करण करावण जोग, प्रभावै सूई फुन होग। पसरे आप अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पार अवार। नानक रचना प्रवृचि, बहुविधनिक प्रकार अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है। कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्व कौहिर है, कई कोट पर दुख न कर है। कई कोट माया श्रमाए, कई कोट परदेश परमाए। जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर वृख निपजाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट सस्य सूर्य नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस ताम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र। कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जखे किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा। सब ते नेरे सबूते दूर, नानका फलिप्त रहा भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्म है जीव है मरे, कई कोट बोजूनी फिर है। कई कोट बैठत ही काहे, कई कोट काल है थक पाए। कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत। जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब कुछ प्रभ कह हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट काणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट धोए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कई बार पसरे उपासा, सदा सदा के कंकार। कई कोट कीने बपात, प्रभ ते हो ब्रह्माय समात। ताकांत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोई। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास। कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नित्रे। कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय सत सद ही जीवै। कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सह सुमावै। अपने जन को साथ साथ सुमारे, नान कोई परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रवेक है, दूसर नाही कोई।
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋ ਇਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਕਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰ ਹਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਤੁਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਵਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੁਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ ਕਉ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸਕੈ ਹਾਥ ਹੋਇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤੈ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ਨਿਮਕ ਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰੇ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ

भाव, जाका दृष्ट कछु नयावे, तिस तत्काल दादिस प्रगटावे, जाकू अपनी करे बख्शीस, ताका लिखा नगन जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल नाही सहात, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, ज्योत स्वभावै सुई फुनथियो, कब हूँ उच नीच में बसे, कब हूँ सोग हर्ख रंग हसे, कब हूँ निंद चिंद व्यवहार, कब हूँ उब आकाश पयाल, कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानकाप मिला वनहार, कब हूँ नृत्य करे बहुपात, कब हूँ सोए रहे दिन रात, कब हूँ मां क्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की हो तरवाल, कब हूँ होए बह बड़ राजा, कब हूँ पेखारी नीच का साजा, कब हूँ अपकीर्त में आवे, कब हूँ पला पला कहावे, ज्यो प्रवराख त्यो ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कब हूँ हुए पंडित करे विख्यान, कब हूँ मोन धारी लावे ध्यान, कब हूँ तट तीर्थ स्नान, कब हूँ सिर साधिक मुख ज्ञान, कब हूँ कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनिक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागीत कावे, जो प्रभावे तिवै नचावे, ज्योति पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कब हूँ सा संगत यो पावे, उस स्थान ते बौर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रतेक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जले आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान, श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बटे बटे अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतराज अभिमान, सो नर्क पाती हो वत्स्वान, जो जान मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहा वै, जन्म मरे भोजन परमा वै, धन भूमिका जो करे गुमान, सो मूर्खंदा ज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै, नानकी हा मुक्ता गै सुख पावै, धनवंता हुए कर गर्वावै, तृण समान कर संग न जावै, बोलस कर मानु कूपर करे आस, पल भीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन मैं हुए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दर गै परवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवे, हर दर गह को कैसे गवे, आपस को जो पला कहावे, किस है पलाई निकट न आवे, सर्व की रेंजा का मन हुए, कहु नानकता की निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ ते कछ हुए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब ही जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जून मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निचल ना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हो छूटै, सहस कटे लकूट तावै, तृप्त न आवै, माया पाछे पावै, अनिक भोग बिखिया के करै, नै तृप्तावै, खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बृते सब काजै, नाम रंग सर्व सुख हुए, बड़भागी किसै प्राप्त हुए, करन करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आपा प्रभ सोए,
जो कुछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब कह संग बूझे देखे करे विवेक आपह एक आपह अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहा समाय आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप गिनू अपन विस्तार सब कछ उसका उकर निहार उसते पिन कहो किछ होए थान तनंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौतक करे रंगा पार मन में आप मने अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सुलोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मैं पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोई संत कै दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाहे संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में छलै संत कै दुखन सब को छलै संत

लिखे का लहना पाई, सब किस जिसका करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्योच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जा कै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए त्या लोए, ताजा कै हृदय को हुए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख हैत, सची दि सचा आकार, सच वरत सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सत समाता। सलोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसहि बुझाए नानका, जिसो वैसो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मानुक की तू प्रीत्याग, तिस्ते पर नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे धाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, साथ तेरे की चरणी पाओ, नानक है मन हो नराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण परण जाका नित्र फूर, तिसका मंत्र न जाने और, अनदरू मंगल सजा कह, सर्वथोक सुनिए करता कह, राज में राज युग में जोगी, तब मैं तविश्वर गृष्ट में भोगी, त्याय त्याय भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया, जाकी लीला की मित नाही, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरु अपने सूत, समत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्या वैसे, त्यो गुण में जाकू परमाहे, जन्म रह फिर आवै जाय, ऊंच नीच इसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे रंग, नाना बिर किनो विस्तार, प्रभ बनासी एकंकार, नाना चलत करे किन माहे, पूरे हो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के

सुन सुन अर्ध करे प्रभु का जय। प्रगटे गोपाल महांत कह माथी, नानक उदरे तिन कह साथी। शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम सासंग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेव की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभु तारी, नानक निभे खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत भी, सावधानी का कर जीत। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहूत निदान। सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर तन काट चले जन सोई, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रित नव नित, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगा, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चत

वेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जाके मस्तक करम प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस दिन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहि समानी दुख रूप बिन से पै परमु साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता

सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रवना भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कलंकी स्वरूपे नमो राज राजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोग वेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोग वेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुत हरमे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इशनान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तु निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरद कर्ता अदो उर्द अर्धं अगं ओगहर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अभंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेषे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वगयानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं परसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदं निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकाल कर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत त्वा प्रसाद आदरूप अनादमूर्त अजोन पुरुष अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पूर्ण काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेखो आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जिह वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानई केह जेब तात मात न जात जाकर जानम मरन बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानही पोर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत तापेओ सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्वस्वरच्यो स्वयंभव गणन पंजन हार कालहीन कला संयोगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेशो अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप आमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्राप्त पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेखो सर्वशास्त्र न जानहि जिहि रूप रंग अर रेखो परम वेद पुराण जाकह नेत पाकत नेत कूट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चेत मधुभार शंतु प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनांग अनपौ प्रकाश निस दिन अनासु अजान बाहु साहन साहौ

ब्रह्म महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिशय कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंड अंड बाढ़ चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती शांत व प्रसाद का सते के आशेज देशय के अभिज पेशय के अगंज कर्म है के अपंज परम है के अभिज लोक है के आदित शोक है के आवतूत वरण है के बेभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जागतंग कृति है के शत्रंग क्षत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपौ अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीने के रोजी रजा के रही मेरे हाक है के पाक बेऐब है के गै भूल गैब है के अप बुल गुना है के शाह अनशाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमे के परमं रहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे की हुसनल वजू है तमामल रजू है हमेशो सलामे सलीकत मुदामे गनीमल सिकस्त है ग्री बुल परसुत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमी जुल तमामे रजूवल निदान है हरीफल अजीमे रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ अंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभृग त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिभोगत स्वरूप है अशेज है अशूत है कि नरकं परनास है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभोगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंत है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शंत प्रसाद सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल शांत त्वा प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमासं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात
निरसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समासुल कलाम हैं, के साहेब दिमाग हैं, के हुस्नुल चिराग हैं, के कामल करीम हैं, के राज कर रहीम हैं, के रोजी दहें दहें, के राज कर रहें दहें, करीमुल कमाल हैं, के हुस्नुल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकान हैं, हिरासुल फिकान हैं, कलंकं प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, की नरकं प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, के सार भूल गुवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तुमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परंग परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेसुल अलेख हैं, हमेशुल अपेक हैं, जमीनल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, क्रीमुल कमाल हैं, के जोरत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुभाष हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग हैं, मधुभार शांत त्वा प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनासु त्रित तर तुरासु अजान बाहो एक सदाहो ओंकार आदु कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछेज गात आजे न बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीट धर्म आत तीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वा प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरन है जाग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंकर है सर्वंकर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजपाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है आरिगंजन है रेप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तमसंग शांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी शांत अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती
चतर चक्र पुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरे ओंकार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जार संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे पारी पूजान के पूप पली वेद न्यावत शीस न जात बिचारे इते पये तो कहा पये पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फेराए सब देश दिशान को बांजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के पूपत कौन गनाए नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसेखाय वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखाय पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार क देखाय श्री भगवान भजे बेन भूपत एक रति बन एक न लेखाय सुध सिपाहा दुरंत दुबाहा सो साज सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की तार पशैया तोरत देश मलेंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत पवैक पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे उन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खापेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जादित दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फिर न तेह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठो काय ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सोन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा को शीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पाश को मृतान कौ पूजन तायो ऊर क्रिया ऊर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर किरिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरे करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा
हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दै मुहे बचावो सुखी बसै मोरु परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन को आज संगरियै पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाट कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दाय मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करे हो रक्षा राख ले हो मोहे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेवकियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जच्छन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै काट काट के पट पट की जानै जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपने बूझ ऊचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरपकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चिन्हत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो राण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखे तो हव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न है आए है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद सिद्ध कर मो सब होई दुष्ट शाह शवाय सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता श्री अस तुज जब पय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेल सुने गुंग जो जाहि सुरस ना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई
दुख दर्द भौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस फुन तीन कही जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक ना जानेओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे वो सब तुहे बखानेओ। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै,

श्री वाहिगुरु साहिब जी, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बेखो खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई।

अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया। रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए। जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक जन जलत उबारे। भव सागर सुख सागर माही, पीव रहे जल निखुटत नाही।

कबीर जी, नग्न फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नागे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाई जाओ सिद्ध पाई।

भाई कहो कबीर सुनो नर भाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी संध्या प्रात इस नानक राही ज्यों

चतुराई न चतुर कुज पाई है रहाओ। पर हर लोभ अर लुकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अहंग मेव, मिल पाथर की कर ही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास नह कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती।

ही नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण, हम कत सूद, हम कत लोहू, तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। गौड़ी कबीर जी

जी। जो जन परमित परमन जाना, बात नहीं बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहा ही, जान जान सब कह कतहा ही। रहाओ कहन कहावन नह पतियई है, तौ मन माने जाते हों मैं जई है। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग हुए नहीं चरण निवास। कहो कबीर एह कही है काहे, साध संगत बैकुंठ है आहे। गौड़ी कबीर जी। उपजै निपजै निपज समाई, नैनह देखत

रहाओ। अनिक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिन सह गुरु देखे सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी

अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनिक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे कार हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कब हूँ राजा छत्रपत कब हूँ पेखारी। साकत मरह संत सब जीव है, राम रसा।

कबीर जी पंच पदे। जौ जल छोड़ बाहर भयो मीना, पूर्व जन्म हो तप का हीना। अब कहो राम कवन गत मोरी, तजी ले बनारस मत भई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत बरस तप किया काशी, मरण भया मगहर की बासी। काशी मगहर सम बिचारी, पूछी भगत कैसे उतर सुपारी। कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर

इस तन धन की कवन बड़ाई, धरन परै उरवार न जाई रहाओ। रात जे सोवह दिन करह काम, एक खिन लेह

गुरमत रस रस हर गुण गावै, रामै राम रमत सुख पावै। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बास सुगंध बसाई।

बिन जल संगम मन महनावो लोचा समसर एहो व्यवहारा तत विचार क्या अवर विचारा आप तेज बाई पृथ्वी आकाशा ऐसी रहत रहूं हर पासा कह कबीर निरंजन त्यावो तित कर जाओ जे बहुर न आवो गौड़ी कबीर जी तिप देव।

कर जानिया सहज सुपाई मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे घर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज भागी।

अब कैसे मरों मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। रहाउ मरनो मरन कह सब कोई, सहजे मरे अमर हुए सोई। कहो कबीर मन भया आनंदा, गया भरम।

पीर राम भगत अनियाले तीर राव एक पाए देखो सब नारी क्या जानू सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हर सा ठाकुर भाई मुक्त अनंत

क्या बस जो बिख दे महतारी गौड़ी कबीर जी, बिन सत सती हुए कैसे नार, पंडित देख हो हृदय विचार, प्रीत बिना कैसे बधे स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं नेहो रहाओ, साहन सत करे जी अपने, सोर मैये कौ मिले न सुपने, तन मन धन गृह सौप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। गौड़ी कबीर जी, बिखिया व्यापिया सगल संसार, बिखिया लै डूबी परवार, रे नर नाव चौड़ कत बोड़ी, हर स्यों तोड़ बिखिया संग जोड़।

सो जल निर्मल कथित कबीर गौड़ी कबीर जी। जेह कुल पूत न ज्ञान बिचारी विधवा कस न भई महतारी। जेह नर राम भगत नह साधी जन्मत कस न मुओ अपराधी। रहाओ मुच मुच गर्भ गए कीन बचया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप नाम बिना जैसे कुबज कुरूप। गौड़ी कबीर जी। जो जन लेह खसम का नाओ तिन कै सद बलिहार है जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो भाई मेरे मन भावे। रहाओ जेह कट राम रहया भरपूर तिन की पग पंकज हम तूर। जात जुलाहा मत का तीर सहज सहज गुण रमै कबीर। गौड़ी कबीर जी। गगन रसाल चुवै मेरी पाठी संच महारस तन भया काठी। वाको कहिए सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा। रहाओ सहज कलालन जो मिल आई आनंद माते अन दिन जाई। चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तौ अन पहु पाया। गौड़ी कबीर जी। मन का सुपाऊ मनह व्यापी मनह मार कवन सिद्ध थापी। कवन सुमन जो मन मारे मन को मार कहो किस तारे। रहाओ

रहाओ। कटी न कटै टूट न जाय, सा सापन हुए जग कौ खाई। हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कह छूटिया। गौड़ी कबीर जी।

बैकुंठ तुझह ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाबुक मारों, कहत कबीर भले असुवारा, वेद कतेब ते रह निरारा, गौड़ी कबीर जी। जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए, एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दहर गर्भ बसेरा रहाओ। काया बेगुती बहु विद पाती, को जारे को गडले माटी, कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों न पठावो।

राम जपत तन जर की न जाए, राम नाम चित रहा समाए रहा। का कौ जरै काहे हुए हान, नट वट खेले सारग पान। कहो कबीर अखर द्वे पाख, हुएगा

जब ना हुए राम नाम अधारा रहाओ। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जे सिर रच रच बादत पाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम का ही ना दृढ़ैया रहाओ।

ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख मांगत दुख आगै आवै, सो सुख हमू न मांगिया पावै, भिखिया अजहो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा, रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमू साच कर जाना, सनकादक नारद मुन सिखा, तिन भी तन मह मन नहीं पेखा, इस मन का कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहा समाई।

आवन जाना, जिसका भरम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेयो, इह मन लीन भय सुख देयो। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी ग्वारेरी अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पहे लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होहे न आना, कह कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोरठ पी, रे जी निलाज लाज तुहे नाही। हर ताज कत

भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण शरण है जाके कहो जन का नाही करता के सब को कह बाजास की बाता सब को कह जास की बाता सो समर्थ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर न हो कौन कुपूत पिता को काको कौन मरे

आई रहा। कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहू शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भई राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहा। साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छिड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो

ज्ञान गिरावे है। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही है। राव आप न देहे चूरू भर पानी, ते निंद है जे गंगा आनी। बैठत उठत कुटिलता चल है, आप गए और नूहू कल है। छाड़ कुचर्चा आन न जान है, ब्रह्मा हूं को कहो न मान है। आप गए और नूहू खो वह, आग लगाए मंदिर में सो वह। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख।

जीवत पितर नामा नैको मुए सिराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पाव है कौआ कूकर खाही। मोकौ कुशल बताव हो कोई कुशल कुशल करते जग बिनसै। कुशल पी कैसे होई रहाओ माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही। ऐसे पितर तुम्हारे कही है आपन कहया न लेही। सर जियो काट है निर जियो पूज है अंत काल को पारी। राम नाम की गत नहीं जानी पह डूबे संसारी। देवी देवा पूजह डोलह पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया बिख्या स्यों लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया। अंजन माहे निरंजन रही है बहुड़ न पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलुई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो। इन बिद अमृत पियो है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेती प्रगटिया पद परगासा। सकत अधेर जेवड़ी भ्रम चूका निश्चल शिव कर बासा। तीन बिन बाण तनक चढ़ाइय इहो जग बेदिया पाई। दह दिस बुढ़ी पवन चुलावै डोर रही लिवलाई। उन्मन मनुआ सुन समाना दुविधा दुर्मत भागी। कहो कबीर अनभव इक देखिया राम नाम लिव लागी। गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चकर खट भेदे सुरत सुन अनरागी। आवै न जाए मरे न जीवै तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पही अवरै। नातर था बेगाना रहाओ निवरै दूर दूर फुन निवरै। जिन जैसा कर मानिया अलौती का जैसे भया बरेटा। जिन पिया तिन जानिया तेरी निर्गुण कथा काए स्यों कही है ऐसा कोई बबेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी झल देखी। गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं छैया तह उत्पत पर लो नाही। जीवन मृत न दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए न मुकाती। हलुकी लगै न भारी रहाओ अर्ध उर्ध दो तह नाही। रात दिन तह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहा सुमाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लही है। कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने सत संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दे बैल बिसाहे पवन पूजी परगासियो। कृष्णा गूण भरी घट पीतर इन बिंद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बन जा रहा रहाओ। काम क्रोध दोए भय जगाती मन तरंग बटवारा। पंच तत् मिल दान नबेरा पंच तत् मिल दान नबेर है टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुन हो रे संत हो अब ऐसी बन आई। काटी चढ़त बैल इक थाका चलो गोन छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेवकड़ै दिन चार है साहोरड़ै जाना। अंधा लोक न जाने मूरख ए आना।

लाग रहो भज सरण कबीरा गौड़ी जोगी कहै जोग पल मीठा अवर न दूजा भाई रुंडत मुंडत कह सबदी एक है सिद पाई हर बिन भरम भुलाने अंधा जा पह जाओ आप छुटकावन ते बादे मोह फंदा रहाओ ते बादे बहु फंदा रहाओ जह ते उपजी तही समानी एह बिद बिसरी तब ही पंडित गुणी सूर हम दाते एह कह बड हम ही जिसे बुझाए सूई बुझे बिन बुझे क्यों रही है सतगुर मिले अंधेरा चुकै इन विद्मान कलही है तज बावे दाहने विकारा हार पा

गुरपुर है कृपा तारी पूरी लोच हमारी बड़े ही खुशियां ते अमंगा भरे समय से आके धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन दरबार दियां हाजरियां भर के बख्शा लै रहे परम सत्कार जो सत्संग जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की वाहेगुरु जी की पार बख्शिश दे सदका आपां हुण थोड़े मिंटां विच ही अनंत कारज दी रस्म आरंभ करन जा रहे हैं जिस दे विच सुभाग जोड़ी दे नां हन जी अमरप्रीत सिंह कल सिमरन कौर कुंडर ते अमरप्रीत सिंह कालों जी हंस पुत्र सरदार अमरीक सिंह कालों ते बीबी बलदेश कौर दे बच्ची सिमरन कौर कुनर है जी सपुत्री सरदार हरपाल सिंह कुनर ते बीबी दविंदर कौर कुनर दी उस नंद कारज दे कुछ हिस्से हैं उन्होंने तो पहले मैं आप सब नूं सिख गुरदास दे संगत ते प्रबंधक कमेटी वालों जीवां आखदा ते गुरु की कृपा नाल साडा गुरु घर जो है सब तो वड्डा है कैलीफोर्निया के नाल सब तो शानदार भी है। सो आओ आप हुण वो हिस्से जहान आनंद कारज उन्होंने बारे देख सोच लीए संखेप। पहला हिस्सा होगा अलाही बाणी के कीर्तन का शब्द का कीर्तन कीता लोड़ी काम सवार पे आखी है कारज दे सवार सतगुर साखी है कीर्तन कर रहे हैं साढ़े भाई साहब भाई रशपाल सिंह जी। सो वो हाले नहीं करनगे शुरू जो दसया जाएगा उदों करनगे। ज्यों ही शब्द का कीर्तन संपूर्ण होया त्यों ही भाई साहब नवनीत सिंह जी अरदास करनगे जिस विभाग जोड़ी से उन्होंने माता पिता ही केवल खड़े होणगे जी। बाकी संगत जिवें आप जी बड़े प्यार ते श्रद्धा नाल चुपदा दान बख्शते हो बैठे हो उस तरह ही विराजमान रहना जी। अरदास तो बाद हुक्मनामा लिया जाएगा ते नाल हुक्मनामे दे अखीर ते भाई साहब जी सानू ये दसणगे कि पल्ले की रस्म शुरू करनी है फिर उस वेले वो बेनती करनगे सरदार हरपाल सिंह कोनर जी नूं कि वो अमरप्रीत सिंह कालों जी का पल्ला अपनी बेटी नूं फड़काउणगे ते नाल बेनती करदे आ इत्थे अमरप्रीत सिंह कालों नूं भी कि आप जी ने भी दूस एक एंड तो फड़ के रखना पल्ला ते बच्ची ने भी फड़ना दोनों ने अपने अपने एंड तो पल्ले नूं फड़ के रखना हुंदा सारे ही इस प्रोग्राम दे विच आनंद कारज दे विच। फिर पल्ले तो बाद जो असली हिस्सा है आनंद कारज का वह शुरू हो जाना जी लावा चार लावा ने कली कली राम का पाठ होना पहली का फिर दूजी का फिर तीसरी फिर चौथी तो सुभाग जोड़ी ने यह फैसला किया कि उन्होंने खड़े होकर पाठ सरवण करना बड़ी चंगी गल हैगी है दोनों तरह ठीक है बैठ के भी खड़े होकर भी जिस तरह कई चाहते ने सुभाग जोड़े बैठ के कई खड़े होकर दोनों ठीक ने जी। सो जिस वेले पहली लाम का पाठ भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी करनगे अखीरलियां तुकां वह दोहराउणगे तो उस वेले धन धन गुरु नानक साहब जी का नाम दोबारा आप जी ने सुनिया सरवण किया आप जी ने तो मत्था टेक के आप जी ने फिर प्रक्रम शुरू कर देनी है मेरे वाल पासे आने लई आने वाले अमरप्रीत सिंह कालों ने अगे अगे चलना तो बेटी सिमरन कौर कुंडर ने पिछे पिछे सारी मर्यादा दे विच इस तरह ही है जी ते सारा कुछ जो है वह सिख रहत मर्यादा अनुसार होना है। सो उस समय साढ़े कीर्तन जथे ने भी कीर्तन करना लाम दा सो आप जी ने वापस जाके सुभाग जोड़ी ने दस रहा मत्था टेक के फिर खड़े हो जाना दूसरी लाम का पाठ सरवण करन दी फिर इस तरह की प्रक्रमा तो तीसरी तो चौथी चार लावां ने चार ही प्रक्रमा ने सिख धर्म के अंदर चेता रखी तो जदों चार हो गई तो सुभाग जोड़ी ने बेनती है फिर वह बैठ जाएंगे बाकी का कीर्तन जो है दो तीन शब्द जोड़े हैं वो गायन किए जाने मर्यादा अनुसार उस तो बाद आप सारे अरदास खड़े होना अरदास तो बाद फिर आप हुक्मनामा सरवण करना तो बाकी प्रोग्राम जो सन्मान करना ज किसी ने बधाई देनी वो सो आओ आप शुरू करिए गुरु की बख्श लीए कीता लोड़ी काम सार किया स्वास किया करके स्वास सतगुरु साथ साखिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है, पर किसी ते बहुत है। जीदे ते बहुत है, जीदे ते सतगुर की प्रसन्नता है। सतगुरु जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य राज करदे ने। यही नहीं कि लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। उस अपने सेवक दे इलोक ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने। किदे जिदे ते सतगुरु दी नजर करे रही। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना से सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारे, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदा धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ये मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बार है बार। ये मानस जन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारे, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर किसे। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उस नूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वो भगती करके तेरी असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ए मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इस नूं मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इत्थे इस नूं सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहिंदे ने कि ए जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटकै से आई जाए दुख पाएगा। जदों ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आउण जाण दा गेट बन जाएगा। फिर की होवेगा? केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियों दियां, पशुओं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेन ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौन की भटकना शरीर विच रह के कारिया ने, कदी किसी के दर ते, कदी किसी के दर ते, तू उस परमेश्वर का हो जाए। जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, जदों तू परमेश्वर का बन जाएगा सारा संसार तेरा बन जाएगा। गुरु प्यारी सात संगत, सतगुरु कृपा कर, सानू नाम की दात देन, सानू अपने नाम के नाल निवाजन, कृपा कर इस जन्म तो बाद विच फिर कोई आउण जाण दा गेड़ ना बने, फिर 84 लाख जोना ना भोगने पैण। गुरु प्यारी सात संगत, यही अरदास गुरु के चरणों विच करिए। सतगुरु के चरणों से बेनती करके, हे परमेश्वर अब की बार बख्श बंदे को
ਬਹੁ ਨ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕਥਾ ਸਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

0: लंच।
1: तो फोन जो अगला जत्था आपके नोटिफिकेशन पर आएगा कि पहले गुजारा साहब के हजूरी रागी दरबार साहब के हजूरी रागी भाई साहब भाई इंद्र जीत सिंह के खालसा बेनती करा भाई साहब नियान इन्हों के जो राग जिन्हें जिन्होंने कीर्तन करना है राग बिलावल से रामकली। तो बेनती है भाई साहब शुरू करने के लिए वाहेगुरु।

कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंधविज्ञानी कई कोट पर धर्म कहे रहे कई कोट पर दुख न कर रहे लाभ लगना नानक करते ही जाने करता रचना कई कोट पंखी सरप पाए कई कोट पाकर गिरफ लिख जाए कई कोट सत्य सूर्य नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र चक्र कई कोट राजस्थान सागर कई कोट देव प्राण सुंदर शासक कई कोट किए जीवे कई कोट गिरी में सुगम जीवे सत्य नेर

सब जाए सबके दुख मर न पाए। हमके हरे बरके रखोए सबके दुख काम भ्रष्ट होए। संत के दुख से मुख भवे संतन के दुख काम जीव धरे। संतन के दुख से स्वामी जले संत के दुख सबको चले। संतों की कथा कोई ना

0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
1: ठाकुर के सेवक
0: ठाकुर को सेवक जाने संग, कब का सेवक नाम के रंग,
1: सेवक को
0: वो सेवक जिस क्या प्रकारे, नानक सो सेवक साथ साथ हमारे, अपने दास को देव बधाई, अपने सेवक को नाम जपाई,
1: प्रभु
0: के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक पूछ के ऊँचे, नीची कीरी मैं कर लाके, बसम करे लश्कर कोट लाके, मानस गतन कर्त वो बात, किसके कर्तव्य बिरधे जात, आगे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभु अलग बिनाई, नाम रतन जिन गुर मुख पाया, किसके छावर नहीं दृष्ट आया, नाम रस जो जन तृप्ताने, मंत्र नामे नाम समाने, बोलो जी बाद दिन

0: वचन सर्वव्यापी राम संगचन
1: ये
0: जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हाथ पर जाने
1: अंतर बसे भारती होगी
0: आप सब किया सब सत्य किस पबरे इस पर के सगली उत्पत्त करा लखी न जाए जिस भावे किस नए मिलाए अंतर जिस आप जनाए नानक जन आप बुझाए सदल समझरी जाता तना आपन जस आपकी सुना सत्य मत लिप्त हो रहे जो कि क्षण स्वापे कहे इससे हुए सुना ही बुरा ओरे कहो कि नहीं कुछ करा आप सारधारी सब साथ पोत पोत अपन सकरार इसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक के जान
1: जो जाने ते स्वास्थ्य
0: धनवंत कुलवंत पटवंत जीवन मुकुट हृदय भगवंत
1: राम